0: सोलू एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज उज्ज्वल भविष्य को लागी हाम्रो अभियान
1: Soundcheck. Sony FM. The studio time.
2: It's 6 p.m.
0: टाइमचेक को साथमा न्यू स्टार डिजिटल कलर तथा ज्वालामय अफसेट प्रेस सोलु दुर्गुंड नगरपालिका 5

0: बनायो अब एक्साइटमेंट टीवी में मात्र होना हर भी तरफ महसूस होगा
1: ये फुटबॉल सीजन खेल चेयर गार्डन अपग्रेड करने टूगेदर विद सैमसंग मिनी एलईडी टीवी सैमसंग विजन एयर टीवी बताने सामदार मात्र 9999 में या 12 महीने समय को नेट टीवी पैकेज संगे निःशुल्क व्हाट्सएप लाइव सब्सक्रिप्शन साथ ही 25% समय को डिस्काउंट और 5 महीने समय को ईएमआई

0: ऐसा पदार्थ ने मानस को योग्य स्थान प्रदान प्रभाव पारने का साथ ही उसको भावना उसमें परिवर्तन लगे नागरिक को प्रमुख प्रसार प्रसार योगदान रूपा जोड़ दिए स्वस्थ जीवन और सभ्य समाज निर्माण में हाथी बाल नागरी औषध विकास समाज निर्माण का जिला प्रशासन कार्यालय सुमुख सुलू एसिड को संयुक्त प्रयास में जिला हित में जारी संघोष
1: Yes, we can do something.

0: ne tartışma adige dünyamı yapmayı bekleyen. Aynen tosa usulganı dinuak vakta gankimlela bu tuku. Vukina bidat radyo denşara apunu çok ona. Vukina bidat. Denka bentomen ben denşao yetmabun.
1: मौसम संबंधी कई सूचना प्राप्त कराओ सुरक्षित भविष्य निर्माण कराओ मौसम तथा जलवायु संबंधी सूचना निरंतर कराओ मौसम पूर्वानुमान की जानकारी नियमित चुपाई कराओ प्राकृतिक विपद जोखिम न्यूनीकरण सचेत बनाओ जलवायु परिवर्तन का असर घटाने सामूहिक प्रयास कराओ वन संरक्षण वृक्षा रोपण में सक्रिय सहभागिता सुनाओ ऊर्जा बचत और स्वच्छ ऊर्जा को फैल बनाओ बाथरूम प्रदूषण नियंत्रण जिम्मेवार बनाओ बाथरूम संरक्षण करो
2: आंतरिक मामला तथा कानून मंत्रालय पुष्टि प्रदेश द्वारा जनहित में जारी संदेश
1: यूनी हिस्सा बचाउ र बचाउ लैंगिक हिंसा सामाजिक अपराध हो बाल बालिका लैंगिक हिंसा को जोखिम हो सकता हिंसा छिमेकी आफन्तको साथी भाई परिचित नातेदार र जोसुकी हो सकता अभिभावक ने अपना छोराछोरी को व्यवहार ख्याल राख बाल बालिका को चाल चलन पानी बेहोरा अस्वाभाविक परिवर्तन आयोग हो सकता तस्त पाइने उन्नीसंग तत्काल क्रा कर बाल बालिका सह नियमित संवाद करौ
2: आंतरिक मामला तथा कानून मंत्रालय पुष्टि प्रदेश द्वारा जनहित में जारी संदेश

0: तथा जातीय विविधता बीच एकता को आवाज
1: सुने एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज
0: सूचना शिक्षा र मनोरंजन को अपूर्व संगम
1: सुने एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज
0: उज्जवल भविष्य को लागि हाम्रो
2: डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामय अफसेट प्रेस सोलह दुर्गुंड नगर पालिका 5 सोलह

0: 나 아스피 만큼이 말하고 제일 비즈니가 버즈잖아. 에이 간지 자자 버섯자리 비즈니가 버즈니라고. 아 그리 진코 숨기려라 커서리 사고 람로 오리지널 비즈니가 사만 하루 끼는 뻔인다. 자 파에 땡 바탈량가 에스피 비즈니가 온서다. 오리지널 비즈니가 사만 끼는다. 오 살림코 버사 일렉트로니스 마자는 버사. के तपाई घर तथा अफिसको लागि बिजुलीको राम्रो क्वालिटीको सामानहरु खोज्दै हुनुहुन्छ? यदि क्वालिटीको इलेक्ट्रोनिक सामानहरु लिन चाहनुहुन्छ भने सोलु दुतकुण्ड नगरपालिका पार्क सल्लीमा रहेको वर्षा इलेक्ट्रोनिक्स एन्ड सर्भिस सेन्टरमा सम्पर्क राख्नुहोस्। यहाँ विभिन्न ब्रान्डका गुणस्तरीय बिजुलीका सम्पूर्ण सामान, सर्भिस केबल, मल्टी प्लग, पावर सकेट, मिस्टी, अर्थिङको तार, अर्थिङ रड, अर्थिङ केमिकल उपलब्ध छ। साथै एलसीडी, एलईडी टीवी, साउंड सिस्टम, कंप्यूटर, लैपटॉप, हाउस वायरिंग का सामान हरु, चार्ज वाला टॉर्च लाइट तथा इलेक्ट्रॉनिक सामान हरु होलसेल मूल्य में पाइन्छ। सत्यनमा परेर जलेका संपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सामान हरु पनि मरम्मत गरिन्छ। साथै डीप फ्रिज, फ्रिज एसी पाउनका साथै मरम्मत पनि गरिन्छ। प्रोप्राइटर अजय पञ्चियार, सम्पर्क नम्बर 9809590094 र 9863668618। वर्षा इलेक्ट्रोनिक्स एन्ड सर्भिस सेन्टर, सोलु दुतकुण्ड नगरपालिका पास सल्लेरी सोलुकुम्बु,
1: राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकदेखि 30 मिटर भित्र।

0: 要慢慢才划出速度的感动सोलू एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज उज्जवल भविष्य को लागि हाम्रो अभियान
1: सोलू एफएम स्टुडियो टाइम स्लाबिन एयर बिहानको 11 बजे
0: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलरला तथा ज्वालामाई अफसेट प्रेस सोलू दुर्गुम नगरपालिका 5 सोलुखुम्बु
1: नेपाल में सर्वाधिक बिक्री हुई अंतर्राष्ट्रीय गुंडा दान की मोटर साइकिल तथा स्कूटर अब उपलब्धता को मिलन चुकी गुंडा का विशेषता
0: जापानीज ऊर्जा प्रवृत्ति उत्पादित
1: उत्कृष्ट माइलेज
0: राम्रो रिसेल मूल्य
1: टिकाऊ र भद्भदो
0: अफरोड का लागि पनि उपयुक्त
1: BS6 तथा नयाँ वर्षन बजार में लॉन्च भइरहेको
0: सबै उमेर समूह कर्मचारी तथा व्यवसायिक प्रयोजन का लागि पनि अति उपयोगी खोटांग को डिजिटल बजार फाइनेंस को सुविधा सहित हिंडा का सभी मॉडल का मोटरसाइकिल तथा स्कूटर कंपनी के मूल्य में पाइने
1: जिनसुक मॉडल का जेन्युइन पार्ट्स पाने का साथ ही सर्विसिंग सेवा
0: एक्सचेंज को सुविधा सहित मोटरसाइकिल तथा स्कूटर खरीद करना एक सेट हेलमेट सर्विस सेवा निःशुल्क दीने
1: ऑनलाइन बुकिंग करे भुगतान करे में होम डिलीवरी को सुविधा समेत
0: रहने को आधिकारिक विक्रेता होम मल्टीपर्पज सर्विस प्राली सिद्धिशरण नगर पालिक 11 गुरुमारे भिजन
1: संपर्क नंबर 0375902222 9852880222 और 9842280300
2: आदरणीय श्रोताबिन तपाई अहिले सुन्नु भएको छ सुनाथन सुनाथनमा अब तपाईले सुन्न सक्नुहुन्छ विभिन्न नेपाली लोकगीतहरू

0: उज्जवल एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज उज्जवल भविष्य को लागि हाम्रो अभियान
1: डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामय अफसेट प्रेस सोलू दुर्कु नगर पालिक पांच सोल कुंबू
2: Wherever you are, stay connected with the wider world with the BBC World Service. Now streaming on Zeno.fm and the Zeno Radio app.
0: Where do we begin?
2: With internet.

0: सर्वाधिक बिक रही हूँ अंतर्राष्ट्रीय फुंडा ब्रांड की मोटर साइकिल तथा स्कूटर अब उत्कृष्टता को नियंत्रित
1: फुंडा का विशेषता
2: जापानीज ऊर्जा बहुरी उत्पादित
1: उत्कृष्ट माइलेज
2: राम्रो रिसेल मूल्य
1: टिकाऊ र भद्भदो
2: अफरोड का लागि पनि उपयुक्त
1: BS6 तथा नयाँ नयाँ वर्षन बजार में लंच भइरहेको
2: सबै उमेर समूह कर्मचारी तथा व्यवसायिक प्रयोजन का लागि पनि अति उपयोगी
1: हाम्रा सेवाहरू
2: र खोटाङ को डिजिटल बजार बाटै फाइनान्स को सुविधा सहित हुंडा का सबै मोडल का मोटरसाइकिल तथा स्कूटर कंपनी के मूल्य में पाइने
1: जुनसुकै मोडल का जेन्युइन पार्ट्स पाउनु का साथै सर्भिसिङ सेवा
2: एक्सचेन्ज को सुविधा सहित मोटरसाइकिल तथा स्कूटर खरीद गर्दा एक सेट हेलमेट र सर्भिस सेवा निशुल्क दिइने
1: अनलाइन बाट बुकिङ गरी भुक्तान गरेमा होम डेलिभरी को सुविधा समेत रहनेछ
2: ओखल हुंडा को लागि आधिकारिक विक्रेता होप मल्टीपर्पज सर्भिस प्राली सिद्धिचरण नगरपालिका 11 गुरुमारे भुजाङ ओखल हुंडा
1: सम्पर्क नम्बर 0375902222 9852988002222 र 9842380300

0: Raio Rádio, Solu FM. Solu FM, 101.2 MHz. Ujjwal bhavishyako lagi, hamro abhiyan.
1: Sanchez. Solu FM, it's radio time.
2: It's 4 p.m. Adharanna ko 4 bajyo.
0: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामय ऑफसेट प्रेस सोलु दुर्गुंड नगर पालिका 5 सोलु

सरकार विज्ञापन बोर्ड न्यू स्टार कलरिया तथा झोलामाई अफसेट प्रिंटिंग प्रेस सुनोदित कुंडी नगर पालिक पांच तमेड़ी सुनखुंबू विगत देखि नई ग्राहक विश्वास जीती आयो।

0: Station. City FM, the studio time.
1: It's 6 p.m. Time to put coverage.
2: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामय ऑफसेट प्रेस सोलह दुर्गुंड नगर पालिका पांच सोलह कुंभ।

0: को नेपाल दर्पण में साथ ही हृदय रिमाल सँगै प्रमुख सेमी कंडक्टर कंपनी को आमदानी में नया उचाई
1: र विश्वकप फुटबल में आज रात अर्जेन्टिना र इजिप्ट ले खेल्द स्विटरलैंड र कोलम्बिया बीच को खेल भोलि बिहान पौने दुई बजे
2: मेरे कपड़ा पैकिंग कर दू तो सामजी को मिसेस कैंसर उपचार कराने इंडिया संगे लिएर जानु पर्ने
3: हो ए सुन्नु त अब कैंसर को उपचार सीएमसी कैंसर इंस्टीट्यूट भरतपुर में नहीं हो नेपाल में पहिलो पटक अत्याधुनिक भेरिएंट ट्यूबिंग भएको 60 काउंट र हाइपर आर्क लगायत का अत्याधुनिक उपकरण प्रयोग करी मस्तिष्क में रहेको ट्यूमर फोक्सो को कैंसर स्तन कैंसर घाटी तथा टाउको संबंधी कैंसर पेट तथा कलेजो संबंधी कैंसर पाठेघर को मुख गर्भाशय तथा मूत्राशय संबंधी कैंसर तथा अन्य कैंसर को उपचार हुन्छ कैंसर भएको ठाउँको पहिचान गरी रेडिएशन को माध्यम पूर्ण रूप में निको हुने गरी पनि उपचार गरिन्छ सरकारी अस्पताल की सेवा शुल्क में उपचार होने का साथ ही नेपाल सरकार प्रदान गरिने कैंसर पीड़ित का लागि 1,00,000 सम्म को छूट को व्यवस्था पनि छ
2: यस्तो सुविधा रहेछ म अब कैंसर उपचार कराने सीएमसी कैंसर इंस्टीट्यूट में नहीं लिएर जान्छु
4: कैंसर विरुद्ध आंसर को किरण सीएमसी कैंसर इंस्टीट्यूट
5: फोन 056-494-333 493-555
0: नेपाल दर्पणमा अब खबरको सिलसिला नेपाल राष्ट्र बैंकले आउँदो आर्थिक वर्ष 2083-84 को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ गवर्नर डाक्टर विश्वनाथ पौडेलले आज सार्वजनिक गर्नुभएको मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्ज 11% विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको छ यस्तै मौद्रिक नीतिले आउँदो आर्थिक वर्षमा मुद्रास्फीति अर्थात मूल्य वृद्धि दर 5.5% भित्र सीमित राख्दै आर्थिक वृद्धि दर 7% पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ आर्थिक वृद्धिमा सघाउ

0: Heart to your heart. Solo FM 101.2 MHz.
1: TWR Nepal Nesur Jo Marga Dasan Radio La Tasidile Jainasi. जी क्यों मोबाइल डाक्टर सुन के बंद दुखी पड़ना संगीत के अंदर प्यामो के दिन

0: नगरौं। समृद्ध समाज निर्माण को लागि सबै एकजुट हौं। अधिकार को दुरूपयोग नगरौं। जनहित को लागि सुन्ने एफएम ले तैयार पारेको सामाजिक सन्देश।
1: Thank you.

0: गोलू एफएम 101.2 MHz उज्जवल भविष्य को लागि हाम्रो अभियान
1: स्टूडियो टाइम
2: टाइम
3: चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामय अफसेट प्रेस सोलू दुर्गुंडा नगर पालिका 5 सोलू कुम्बू।

0: मोनरो एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज उज्ज्वल भविष्य को लागि हाम्रो अभियान
1: Sanche, Surya Singh, the studio time.
2: 10 p.m. Ratko 10 baje.
3: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामय ऑफसेट प्रेस सोलु दुकुम नगर पालिका 5 सोलु कुंभू